101 सम्मानित बजरंग स्टील को TMT शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले बिहानको 6 बज्यो
1: यस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
3: वेट वेट वेट

111 सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले बिहानको 8 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: वेट वेट वेट

0: म्युजिक म्युजिक म्युजिक अनि
1: सेमी टु प्ले म्युजिक
2: या अफ कोर्स सेमी टु नॉन स्टॉप प्ले म्युजिक ओन्ली ऑन नंबर 1 अमृत एफएम to play music only on Amurta FM.

0: म्युजिक म्युजिक म्युजिक अनि सेमी टु प्ले म्युजिक
1: या अफ कोर्स सेमी टु नॉन स्टॉप प्ले म्युजिक ऑन योर नंबर 1 अमृत एफएम to play music all your amurta fm

0: अहिले बिहानको 10 बज्यो।
1: यस टाइम चिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wait, wait, wait, wait.

एकबाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आईबीएन एंगल चैनल प्रयोग शताब्दी ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

191बाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

101 सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बी एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

101 सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले साँझको 5 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: वेट वेट वेट

0: अहिले साँझको 6 बजे हो।
1: इस टाइम से का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wait, wait, wait, wait.

101 सम्मानित बजरंग स्टील को TMT शर्ट आई बीम एंगल र च्यानल प्रयोग शताब्दी सम्म ढुक्क हुनुहोस् बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: Sanjana! Sanjana!
1: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां.